0: 块就。
1: तब ये तेरा सोचो ता ता ता वो शिक्षक के में ना कोचिंग से वो तो वाला शायद शिक्षक तो रंग के पास अच्छा से इंटर नहीं से लेके तार रटाला वो तो के सेम बिना ले कहाँ में जो किस वाले ले किंतु जिन तो से जब तो चिंबु से हिट हो गया में ता या बोल रहा था यार जब जो चुंग सोचो किसी वामा ते सोचो चुंग से तो सीधा किस
2: 为了让获救小羊得到精心养护，队员们还统一调配，分散安置，将小羊三四只一组分流至周边的管护站。离别时，单针战堆不停对着小藏羚羊亲吻、碰头。这些被救助的小藏羚羊会在管护站安心生活六个月左右，等到状态良好时被放归野外，重新回到种群当中。